कुनालालां मनो कुनालालां बिलो अंतार बाए मलयं कुबुपसालिमां उडूडपानुसा कुमिकेर कदे जांदाबाए गले दे उडादपाए उरांदायार ककुपुलाए दे चिगे नोरांवां Ini aku tuila to na butang tang anal kuang kabang oni mang vini singai anal